0: मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का से दिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगे से टिए मधुका फिक्के पाए, फिक्का मूर्खा किए पाना लहे सजाए महला पहला।
1: पंद्रह झूठे प्याज बाहर दुनिया अंदर फैल, आठ साठ तीर्थ जे नहावे प्रेरणा ही मैल, जिन पाट अंदर बाहर बाहर गुदड़ते पले संसार, तिन्ने हुल कर प्रीति दिरिक देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाहीं, किसे केरी बात सच्चे ना, दरबार ऊपर खर्च मंगा जब

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री

0: पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सरवण करदे आं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रखें।

0: ਇਸ ਵੇਲੇ 6:55 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्ताङ्ग आदिपूर्ण इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजनमाध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकरः ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकरः बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन इसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमन्त्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य सम्भाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमन्त्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्रवर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोऽप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यांकतारालेन पराजित्य 54-29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक

राम तेरी गंगा मैली फिल्म चों तुसी ए गीत लता मंगेशकर दे साथियों दी आवाज़ भी सुन रहे हो ते इसकी दे नाल ही हुण अज दा ए प्रोग्राम खत्म करन दा भी वेला हो गए। एक खूबसूरत आवाज़ा खूबसूरत धुनां संगीत दी खूबसूरत झलक तुहानू आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते इस तरह मिलदी रहेगी। ते फिलहाल अज दा ए प्रोग्राम खत्म करन दी मैनू पूनम नू इजाजत दिओ। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी बिल्कुल, तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं ते मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर राहीं भी सुन सकते हो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 8 बज रहे ने हुण तो, बस कुछ ही देर बाद तुसी सुनोगे दिल्ली केंद्र तो समाचार प्रभात। 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 बजे सुनोगे पंजाबी च खबरां।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
2: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
3: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे

0: के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया।

0: ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: यार आ रहे न्यू जलंधर। नेपाल दे विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल अते भारत अपने सरहदी विवाद अते होर मुद्दियां नू कूटनीतिक पहलकदमियां ते गलबात राही हल कर सकते ने। संसद दी उपरली सभा विच बोलदियां कल शिशिर खनाल ने कहा कि सरहदी कारज कमेटी अगले महीने मुलाकात करेगी। उन्हें कहा कि नेपाल अते भारत गुआंढी देश ने अते इस विच कोई शक नहीं कि उन्हें विचकार सरहद नाल जुड़े मुद्दे ने। नेपाल अते भारत विचकार लिपुलेख लिंपियाधुरा अते कालापानी नू लैके लंबे समय तो चल रहा सरहदी विवाद है ते दोवें देश इन्हां खेतरां ते दावा करदे ने। भारत का मनना है कि यह खेतर उत्तराखंड का हिस्सा ने अते इस मुद्दे नू आपसी गलबात राही हल कीता जाना चाहिदा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नवी दिल्ली विच राजस्थान के सीकर स्थित श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट के एक वफद नाल मुलाकात की। सीकर के सबका संसद मैंबर सुमेधानंद सरस्वती भी इस वफद विच शामिल सन। मीटिंग दौरान वफद ने विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शनों लिए वड्डी गिणती विच आउण वाले श्रद्धालुओं लिए रेल संपर्क अते मुसाफर सहूलतों नूं होर मजबूत करन दे उपावां ते चर्चा की। अमरीका ने ईरान ते दस हमले किए ने। यह हमले होरमुज़ पणजोड़ विच तीन व्यापारक जहाजा खिलाफ की गई कार्रवाई तो बाद किए गए ने। अमरीका के केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया ते कहा कि होरमुज़ पणजोड़ विच ईरान वालों मासूम नागरिकों वालों चलाए जाने वाले व्यापारक जहाजा नूं निशाना बनाउण तो बाद यह हमले किए गए ने। अमरीका के एक अधिकारी ने दसिया कि अमरीका की फौज ईरान दी हवाई रक्षा प्रणालियां साहिली निगरानी प्रणालियां मिजाइलों ते ड्रोन परीक्षण स्थानों नूं निशाना बना रही है। ईरान विच बंदरगाह सहूलतों नूं भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताज़ा हमले समझौते की उलंघना ने। अकादमिक साल 2025-26 विच मुढ़ले अते सेकेंडरी पद्धर ते स्कूली सिक्ख्या छड्डण वाले बच्चियां दी दर विच पिछले तीन सालां दे मुकाबले काफ़ी गिरावट देखी गई है। सिक्ख्या मंत्रालय ने कल भारत विच यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 दी रिपोर्ट जारी की जिस विच इह तथ सामने आया है। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण मंत्रालय टी नोटिफाइड टपरीवास अते टीम नीम टपरीवास कबीलियां DNTs लई सिक्ख्या सेहत उद्यमशीलता ते रोजी रोटी दे मौकियां नूं उत्साहित करन लई योजना शुरू कर रहा है। इस स्कीम दा नां सीड DNTs दे आर्थिक शक्तिकरण लई योजना है। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण मंत्रालय ने एक बयान विच इस बारे जानकारी दित्ती। खेडां विच मर्दां दे क्रिकेट विच इंग्लैंड ने 5 T20 मैचां दी लड़ी दे तीजे मैच विच भारत नूं 125 दौड़ां नाल हरा दित्ता है। फुटबॉल विच स्विट्जरलैंड कोलंबिया नूं हरा के 1954 तो बाद पहली बार फीफा विश्व कप दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गया है। वैनकूवर विच खेडे गए मैच विच दोवें टीमां वाधू समां खत्म होण तक कोई गोल नहीं कर सकियां। इस तों बाद पेनल्टी शूटआउट विच स्विट्जरलैंड ने 4-3 नाल जित हासिल की थी। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। भारत ते इंडोनेशिया ने दहशतगर्दी दे सारे रूपां दी सख्त निखेधी कीती है ते अंतरराष्ट्रीय कानून मुताबिक इस खतरे दा मुकाबला करन लई फैसलाकुन तालमेल वाले अंतरराष्ट्रीय यत्नां लई कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाई संसद नूं संबोधन करन वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोवां देशां विचकार रणनीतिक भाईवाली मजबूत करन ते जोर दित्ता। प्रधानमंत्री दफ्तर ने कल वख-वख खेतरां ते आलनीनो दे संभावी प्रभाव दी समीक्षा कीती। केंद्रीय मंत्रालयां नूं राजा नाल रल के काम करन लई कहा। अमरीका ने होरमुज़ पणजोड़ विच तीन व्यापारक जहाजां ते होए हमले तो बाद ईरान ते ताज़ा हमले कीते ने। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 8:40 हो रहे हैं ते हुन वेला हो गया प्रोग्राम महक पंजाब दी दा। बस एक अंतराल तो बाद
2: बदलो आदत बदलो।
3: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
2: बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
4: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते

0: का प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: अंतराल तो बाद प्रोग्राम शुरू हो गया जी, महक पंजाब दी। महक पंजाब दी प्रोग्राम विच तुहाड़े सारियां दा स्वागत कर रही हां जी। मैं तुहाड़ी दोस्त देविका। प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां अवरिंदर सिंह ते सुनिधि चौहान ते गाए फिल्म यारा नाल बहारां चो लए इस गीत दे नाल।

प्रोग्राम महक पंजाब दी च हुणे तुसीं सुनिया हरभजन मान दा गाया गीत अखियां च नींदर। इस गीत नूं लिया गया सी फिल्म असानू मान वतना दा चों। इस गीत तो बाद प्रोग्राम च वेला हो गया जी अगले गीत दा। अगला गीत दिलजीत दुसांझ, गुरलेज अख्तर ते गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ां च।

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
3: हेलो,
4: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। This is the Income Tax Department.
5: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबन तो पहला एक मिनट ली रुको, ते सोचो, ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
6: खेड़ा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमजां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तो सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
7: अंतराल तो बाद प्रोग्राम लेके हाजिर हो गया जी। हेलो फरमाइश प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई है जी तुहाड़ी होस्ट ते दोस्त देविका। बई दोस्तों, तुहानू सारियां नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा गीत, ते इसलिए करना की है वह भी तुहानू सारियां नू पता ही है, पर जेड़े साडे नवे लिसनर साडे नाल जुड़े है उन्हां नू दस देना जरूरी है। बई इसलिए तुसी चुकना है फोन ते मिलाना है साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर मिलाना है 2342-143, ते ये नंबर मिला के पहुँच जाना है साडे स्टूडियो, सानू दसनी है अपनी फरमाइश, साडे नाल करनियां गल्लां बातां। ते फिर इंतज़ार किस गल दा कर रहे हो, चुक लो फोन ते मिलाओ नंबर। ते जेड़े कॉलर जलंधर तो बाहरों कॉल करनगे ना, वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। सो जब तक असी अपने पहले कॉलर का इंतज़ार करते हैं, आओ प्रोग्राम च तुहानू सुनवाने सुरजीत बिंदरखिया का गाया एक गीत।

0: प्रोग्राम हैलो फरमाइश च तुसी सुनिया शब्बीर कुमार दा गाया गीत तेरी मेहरबानियां। इस गीत तो बाद प्रोग्राम च साढ़े अगले कॉलर भी साढ़ा नंबर 2342-173 डायल करके साढ़े को आ पहुँचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने, कितों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो
1: नमस्कार देवता मैडम जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते कितों बोल रहे ने?
1: हरियाणा तो कुलदीप सिंगड़ा बोल रहा जी।
0: कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: ठीक है मैडम जी, तुसीं सुनाओ जी।
0: जी जी बहुत वधिया। ते कुलदीप जी अज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो, केड़ा गीत सुनवा दिए?
1: जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन।
0: लो जी एक गीत आ रहा है
1: तुहाडे लई। मैडम जी मैं तकरीबन 100 बंदे जोड़िया जी नाल जी।
0: जी जी
1: रेडियो वाला 100 बंदे जोड़िया जी पिंड दे विच।
0: जी जी बहुत वधिया, फिर तां ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਸੌਤਨ 'ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

0: आशा भोसले दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी आ पहुंचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: हैलो
0: हैलो
1: हैलो
0: हैलो
1: हाँ जी हैलो मैडम जी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी
1: कौन बोल रहे हैं। मैं जी वरेंद्र कुमार कारड़ा बोल रहा मेन बाजार मंडी दादूगा तो।
0: वरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने।
1: हाँ जी बहुत वधिया जी।
0: जी जी वधिया ही चाहिदा। ते वरेंद्र जी आज केड़ी फरमाइश लेके आए हो।
1: मैं ना गजल सुनी है जगजीत सिंह दी जी।
0: जगजीत सिंह दी कोई भी गजल।
1: हाँ जी कोई भी मर्जी प्ले कर दो।
0: लो जी आपा तो हड्डी फरमाइश
1: पूरी करांगे। हाँ जी थैंक यू मैम
0: जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लिए।
1: थैंक यू।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇਵਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की।

0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के पांच परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज अते बिट्टा बजाज। सैक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा अते डॉक्टर ईशानी। ते अगले साथी ने पिंड कबूल शाह खुबन, जिला फाजिलका तो बलतेज, नवजोत, हरमन, हैप्पी, हैरी ते महम गेट नाभा तो सोमदत्त, ज्योति राणी, कैरव, गुरमंत जी। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें हरभजन मान अते जसपिंदर नरूला दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी ते वेखदे हां जी इस प्रोग्राम च अगला मैसेज किदा आया है। अगला मैसेज आया जी संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर ते कमल साहनी दा पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो। अगले साथी ने मनीला फिलीपीन तो मदन मोहन लहर, सरबजीत लहर, संजू नितिका, अजय एंजल लहर ते नाल ही अर्नव लहर। अगले साथी ने ग्राम पीपल

अमरीका सिक्का। परमजीत पूरबा कक्कड़वाल पुल धूरी तो लिखते ने जी। बिंदर खेड़ी मिंटू सप्पल अमरीक जलान अते प्रिंस। रकेश नरेश जगदीश अंग्रेज पट्टी सेवक सिंह लिखते ने जंडवाला तो चरस सिंह। फतेहाबाद तो हरियाणा पुरानी तहसील चौंक तो लिखते ने इंदरपाल। चंचलपुरी आंचलपुरी गगनपुरी प्रिंसपुरी अते जीवन सिंह बूक। अगले साथी ने पिंड झंझेड़ी तहसील खरड़ जिला एसीएस नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक सुखवीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो। अगला मैसेज आया जी मुहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहमद मिर्फा नवाज अते बेबी चाहत दा दादा बाबू रोड गिरहीड़ झारखंड तो। रिम्पी सिंह पाल सिंह सलीम खान ते तनवीर कौर लिखते ने पहेड़ी पिंड तहसील अमलो जिला फतेहगढ़ साहिब तो। पिंड तेजा मोरी अंबाला तो लिखते ने बंसी लाल संधु कबीर अते जैसबीर संधु ते नाल ही नाल दे ने वरनीत अते पवनीत कौर संधु भी। अगले साथी ने जी पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन ऊषा मोहन टिल्लू नायक अते मधु नायक। श्रीगंगानगर तो लिखते ने सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर जोसन गुरमन सिंह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्श पाल सिंह जोसन वैंकूवर कैनेडा तो रॉबिन सिंह जोसन। जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजू बाई धाकड़ ते युवराज सिंह धाकड़ ते नाल ही शिवांगी धाकड़ लिखते ने ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतनाम एमपी तो। अगला मैसेज है जी सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा ते भाई सुच्चा सिंह पाठक दा अनारकली बाजार जगराओं तो। तहसील अलिका तहसील डब्बाली तो रूप सिंह लखोत्रा करमजीत लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा ते सोनू ते रजनी। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहताज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो लिखते ने। गिदड़बाहा तो मैसेज है जी मंजीत तनेजा परवीन तनेजा पायल निताशा ते हिनाशा तनेजा दा। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा पवन कुमार योगेश तनेजा आस्था तनेजा ते मोहित मक्कड़ ते मुखी राम ते नाल ही मंजीत तनेजा ते पूजा। पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बाल कृष्ण शर्मा प्रवीण शर्मा मुनीश शर्मा ते राहुल शर्मा। हरवंश सिंह संधु पिंड तेजा मोड़ी अंबाला तो लिखते ने। ते अगले साथी ने पिंड शाहपुर कला जिला संगरूर तो अनीता वीरपाल मनु यूवी बंटी मंगल सुखविंदर पाल ते गुरमन जी। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें। इस गीत तो आवाज़ दिती है मलकी सिंह कनिका कपूर ते सोनू सूद ने।

गुरनूर सिंह, रविंदर सिंह, चरतवीर सिंह, अमानत कौर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो लिखते ने यशमीत यशू, सौम्या सिंह अते अविरल सिंह। अगले साथी ने छोटिया बलिया मुंबई कजरत तो अहमद भाई, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागबान, आसमा परी राबिया अते आशू अहमद पूलवाले। अगले साथी ने निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया ते आयान बाबू, धनौरी तेलीवाल तो मंडी हरजी राम मलोड़ तो लिखते ने नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्र राज शर्मा, सुरेश शर्मा, अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। ए मैसेज आया जी नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी तो। कलेर बिहार तो लिखते ने मोहम्मद आसिफ खान ते निकहत परवीन। बलविंदर सरा गुंतास, रमन रसनदीप, मनजिंदर सरा पिंड मोजर सिखा हनुमानगढ़ तो। बन्नेभुज पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो लिखते ने बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम अते आशीष विश्वकर्मा। जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन अते माहिरा नूर। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ सुखबीर जी दी आवाज़ विच।

फ्रेंड्स कनोली करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया, गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन रानो, परवीन नवीन, अनमोल बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श, साहिबा ते मिर्ज़ा, ए लिखते ने करनीखेड़ा फाजिलका पंजाब तो। अगले साथी ने ज़िला फाजिलका पिंड लादुका तो जतिंदर बूक, जसवीर कौर, भगत बिट्टू, सन्नी, जन्नत अते कीरत गगन ते गगन बूक। गांव झगड़ी ज़िला यमुनानगर तो रणधीर बागड़, गुरमेजों, कौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकिरत अते मनराज। पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी ज़िला बठिंडा तो राम सिंह तगड़, भिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, सुरिंदर जौड़ा नेड़े फाटक मोड़ मंडी, गुरजीत नंबरदार मानसा कला तो, गुरतेज कैंत पिंड जलूर तो, मंगू राजस्थानी मोड़ मंडी तो तगड़। अगले साथी ने जी जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी ते सोनू भाटिया। बाजवा कलोनी गुरदासपुर प्रीत तो लिखते ने प्रीतम चंद, अनमोल, दीपक, कोटली कला तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। जगसीर सिंह, गुरा सिंह, दर्शन सिंह, गुरमेल सिंह, मक्खन सिंह पिंड बल्लो जिला बठिंडा तो, मुल्लापुर ढाका मंडी तो राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, न्यूजीलैंड तो अभिषेक जैन, मनजिंदर संधू, जशनप्रीत संधू, बेबी संधू, आशीष खुराना, हरीश तीर, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा एक अखीरला गीत हाजिर कर दियां। इस दे नाल ही मैनू निधि चुगनू अज दा ए प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त देना। फिर हाजिर होवांगे। नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि

0: केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार, आ गया मुड़ के फिर बुधवार ते कोमल हाजिर है फिर एक बार लेके तुहाडे लई ढेर सारा प्यार ते नाले सारिया दा मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है वस्ते वेड़े ते जिहड़ा साडे दिल दे बिल्कुल नेड़े।
1: और कोमल जी दे नाल नाल ज्योति भी हाजिर है जी। कोमल जी, जदों असीं अपने वस्ते वेड़े परिवार चाहुंदे आ ना ते सचमुच सानूं बहुत ही चंगा लगता है। और जदों परिवार च सारे इकट्ठे मिल के बैठते ने ते बई उन्नू ही क्वालिटी समा किया जाता है।
0: बिल्कुल ज्योति, ते सिर्फ सानू ही नहीं चंगा लगता, साडे परिवार दे जिहड़े बाकी मैंबर ने उन्हां सारिआं नूं बहुत चंगा लगता है। साडे स्रोते भी इंतजार करदे ने कि कदों साडा राफ्ता कायम होए, कदों गलबात होए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी उन्हां नूं पहुँचदी है, बहुत सारे संस्कार पहुँचते ने बच्चों तक, तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट दे नाल नाल जिहड़ा ही गीत संगीत हो गया, ड्रामा हो गया, हर चीज़ जिहड़ी असीं अपने स्रोतियां लई लैके आने आ टाइम टू टाइम।
1: बिल्कुल, और देखो ये साढ़े परिवार के सारे जी ने साढ़े स्रोते, और एक परिवार च रौनक जिया ना लगती है, माहौल चंगा बनता है जो छोटे वड्डे बजुर्ग सारे इकट्ठे होके बैठते ने, तो वह घर फिर संस्कारी भी हुंदा है ते खुशहाल भी हुंदा है।
0: ज्योति तेरी गल सही है, पर मैं ना प्रैक्टिकली गल करा तो असी आम कोर्ट च भी देखते हाँ कि परिवारों के बीच ही साढ़े अंदर ही कुछ ऐसे परिवार के मैंबर होंगे ने जिन्हों के करके घर का माहौल कई बार खराब हो जाता है, तो वो वास्ते बाकी सारे भी परेशान हो जाते हैं, तो वो चीज़ में जड़ी असी खुद बैठ के नजिठना होंगे, प्यार नाल इस चीज़ को सामना पैंदा है ताकि सारे हस के मिल के खुशी दे नाल अगे वध सके।
1: देखो झगड़ा तो मन मुटाव की जो असी गल करते हैं तो किस घर च नहीं होंदा,
0: बिल्कुल,
1: पर लोड़ हुंदी है कि असी उस झगड़े नूं वधन ना दईए, बल्कि उसनूं घर दी चार दीवारी दे विच ही अगर निपटा लिया जावे तो बहुत ही वधिया है।
0: बिल्कुल तुहाडी गल सही है, ते झगड़े हुंदे की ने घर दे छोटे छोटे कम्मां वास्ते, ते सच्ची गल है वे ज्योति, मैं ते इक गल जानदी हाँ कि साडी जिहड़ी जिंदगी है ना बहुत छोटी है, प्यार करन लई ते बहुत छोटी है, नफरता करन लई ते भगवांगे चाहे आपां जिन्ना मर्जी सोची जाइए, पर सच्चाई है वे कि ऐसा आ रहा अगला आना है कि नहीं आना कोई पता नहीं, ते क्यों ना असीं प्यार ही वंडीए, आपस विच इक दूजे नाल हसते मत्थे एक दूजे दे लगीए, ते छोटे मोटे कम्मां दी ते कोई गल ही नहीं होंदी, रल मिल के कर लईए, घर दा जे काम औखा लगता है सारे मिल के अगर आपस विच वंड लईए तो उहो काम किन्ना सौखा हो जाए।

0: जी किन्ना प्यारा गीत सी कि उच्चा नीवा बोलना ही नहीं चाहिदा, ना उच्चा नीवा बोलो ना ही कोई गल वधे, ते उत्थे दे उत्थे प्यार दे नाल असी अग्गे वधदे जाइए सारयां नूं नाल लैके।
1: बिल्कुल। और देखो कई गीत इन्ने सोहणे लिखे हुंदे ना कोमल जी कि सुनण वाले नूं लगदा कि इह गीत मेरे लई ही लिखिया गया है।
0: बिल्कुल, सिर्फ लिखिया नहीं जिवें प्रेजेंट कीता जांदा ना ओह अंदर तक पहुंच जांदा है।
1: बिल्कुल। और जिहड़े लिखारी हुंदे ना ओह सामने वाले दा मन बड़ी जल्दी पढ़ लैंदे ने,
0: बिल्कुल जी
1: है ना, क्योंकि लिखना जिहड़ा है इक बहुत वड्डी कला है। और साडा इहो जिही सिलसिला है मेरी कलम तों, और मेरी कलम तों उनवान तहत अज साडे नाल अपना कविता पाठ सांझा करनगे परमजीत कौर महक जी।
0: ते सुनदी है कविता पाठ।
2: मैं परमजीत कौर महक आप जी दे रूबरू कुछ रचनावां लेके हाजिर हाँ जी। पहली रचना जंग युद्ध ते। जंग युद्ध विच देसा ने बस पुत गवाए ने। जंग युद्ध विच देसा ने बस पुत गवाए ने। मां बाप भरा भैणा ते बाल रवाए ने। अणखीली जंग नहीं बस जिद है जंग बनी। अणखीली जंग नहीं बस जिद है जंग बनी। हस दे वस दे देशां अंदर होई तना तनी। फुल्लां दी थां हेठां अंग्यार विछाए ने। जंग युद्ध विच देसा ने बस पुत गवाए ने। आओ तौबा कर लईए हथियार न चुकांगे। लालच नफरत दिल चों बस मार के सुट्टांगे। धरती पुत्रो जागो मां तरले पाए ने। जंग युद्ध विच देसा ने बस पुत गवाए ने। इक देश मोहब्बत दा आपां ने वसाउणा है। इक देश मोहब्बत दा आपां ने वसाउणा है। सारी दुनिया विचे बस प्यार लुटाउणा है। सारी दुनिया विचे बस प्यार वधाउणा है। असां विश्व शांति दे नव सुपन सजाए ने। असां विश्व शांति दे नव सुपन सजाए ने। सन्मान जे चाहुंदे हो सत्कार जे चाहुंदे हो। सादर मीठा बोलो आदर जे चाहुंदे हो। सादर मीठा बोलो आदर जे चाहुंदे हो। फुल्लां विच महका ने ज्यों डेरे लाए ने। जंग युद्ध विच देसा ने तां पुत गवाए ने। महक निमाणी ने बस इक्को सुख सुखी। इस महक निमाणी ने बस इक्को सुख सुखी। आजाद फिजा होवे कोई होवे ना दुखी। महक अमन शांति दे नित गीत ही गाए ने। महक अमन शांति दे नित गीत ही गाए ने। नित गीत ही गाए ने। मोहब्बत दा खजाना वरतो खर्चो ते वधावो जी। मोहब्बत दा खजाना वरतो खर्चो ते वधावो जी। नफरत तो हमेशा वास्ते पीछा छुड़ावो जी। गरीब

0: संसार नहीं चलना, इना बिना जीवन दुश्वार हुंदा। जेकर दुनिया उत्ते ती ना हुंदी, फिर किद्दा सोना संसार हुंदा। अजकल समय ने करवट ले ली है, अजकल धी दी खुशी मनाउन लगे, उस दे जम्मन ते नक मुंह नहीं वटदे, अजकल लोहड़ी भी उस दी मनाउन लगे। जीन लई विद्या दा दान देंदे, उस दे राहां च फुल विछाउन लगे, महक भर देंदे उस दी फुलवाड़ी विच, सब तों वधिया एह सभ्याचार हुंदा। जेकर दुनिया उत्ते धी ना हुंदी, किद्दां फिर सोना संसार हुंदा। कशिश दी बनदे ने दौलत इगम, आओ गजल लिखिए कि पढ़ के आशिकी दा ही इलम। आओ गजल लिखिए, हमेशा नैन क्यों रोवन, हमेशा होंठ क्यों फड़कन, मिटा के दोहां दे टिड्डों सहम। आओ गजल लिखिए, चलूगी मणकियां दी गल, हमेशा छल्लियां दे नाल, के दिल वट्टे वटा के दिल सनम। आओ गजल लिखिए, हनेरा आख दा चानन, तू मेरे पिछे आ जावी, के बनया कुदरती एहो नियम। आओ गजल लिखिए, बना के पाक दिल अपना, गुरु चरना ते टह जावी, के जज्बा है एही सब तो निगम। आओ गजल लिखिए, सदा तो ही मजाजी नू हकीकी थापड़ा देंदी, दिला नू दिल तो दित्ती है कसम। आओ गजल लिखिए, जफा तेरी तुहारी ना, वफा मेरी मेरे दिल बर, करी जा जिन्ने कर सकदा सितम। आओ गजल लिखिए, दवा टक्कर हमेशा मैं, सदा ही हौसले वाली, दवा टक्कर हमेशा ही सदा मैं हौसले वाली, मता औकड़ भी हो जावे सुगम। आओ गजल लिखिए, तेरी की जात है जाना, ते पुछा भी पला मैं क्यों, तेरी की जात है जाना, ते पुछा भी पला मैं क्यों, सच्चे इंसान दी इको किस्म। आओ गजल लिखिए, आओ गजल लिखिए, शिखर ते पहुंच जावोगे जे मन दी सेहत है चंगी, शिखर ते पहुंच जावोगे जे मन दी सेहत है चंगी, सफल होवन दा रस्ता है सुगम। आओ गजल लिखिए, उकर के कालियां सतरां वी देवे सेध जीवन नू, उही तां बन देने सच्चे कलम। आओ गजल लिखिए, शजर अपनी महक देना, सजल नैना तो किरदी है कुसम। आओ गजल लिखिए, सजल नैना तो किरदी है कुसम। आओ गजल लिखिए।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत कविता पाठ परमजीत कौर मैगोना वालों। तो एवं कवितावां देख के लगता है कि जड़ा लिखना है वह अगर बहुत मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं,
2: बिल्कुल
1: देखा जाए तो। अगर आप सोचिए कि अपने दिल के भाव जड़े ने वह कविता रूप में उतारे जा सकते हैं, बस एक कोशिश की लोड़ होंगी है। जिमें इन्होंने अपने हाथ दिया लिखिया हुई कविता साढ़े स्रोतियां दे रूबरू कीतियां, कि यह बहुत ही खूबसूरत लगता है।
3: बिल्कुल, और देखो उन्होंने धियां की होंद की कितनी सोहनी गल की, उसकी महत्ता की कितनी सोहनी गल की है। वखो वखरे विषय सन उन्हां दीयां कवितावां दे, और प्रेम प्यार दा सुनेहा भी उन्होंने लिखा है, और असी भी एक प्यारा जिहा खूबसूरत जिहा गीत ना सुना दीए स्रोतियां नूं।
1: जी बिल्कुल।

0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत सी। ते जिवें गीत होंदे ने या मैं कहां म्यूजिक है, ये रूह दी खुराक होंदी है ना। जदों भी असी कोई गीत सुनते हाँ अपने आप नूं उहदे नाल जुड़िया होया महसूस करते हाँ।
1: जी, और गीत तां असीं सुन लिया ते चलांगे अपने अगले सिलसिले वाल भी, लेकिन उस तो पहला इक अंतराल लै लैंदे हां।
0: जी
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: धनलक्ष्मी शेखर ने साल 2018 विच अपना नाम कमाना शुरू किया, जिस दे नाल ही उसके कैरियर की शुरुआत हुई। उस साल वह तमिलनाडु स्टेट चैंपियनशिप 100 मीटर अते 200 मीटर विच तीजे स्थान ते रही। 2018 की इस जित तो इलावा भारतीय दौड़ाक धनलक्ष्मी ने अपने जीवन विच जो उपलब्धियां हासिल कीतियां, जो करके दिखाया, उस विच मुख हन। साल 2019 विच फेडरेशन कप विच महिलावां दे 200 मीटर इवेंट विच तांसी दा तगमा, अते इसे साल उसने लखनऊ विच होई इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिलावां दे 200 मीटर विच कांसी अते 4x100 मीटर रिले विच सोन तगमा जितया, अते 2019 च ही समर यूनिवर्सियड विच भारत की नुमाइंदगी भी कीती। 2021 सिवाकासी विच हुई तमिलनाडु स्टेट मीट विच उसने 100 मीटर अते 200 मीटर इवेंटा विच सोन तगमे जिते। मार्च 2021 विच उसने 24वें फेडरेशन कप विच 200 मीटर इवेंट विच महान सप्रिंटर पीटी उषा दे 23 साल पुराने रिकॉर्ड नू तोड़िया। वो 2020 टोकियो ओलंपिक्स विच भारत की नुमाइंदगी करदिया अपनी पहली ओलंपिक खेड विच शामिल हुई। 2022 विच उसने तुर्की विच एक एथलेटिक्स मीट विच दौड़ाक हिमादास नू 100 मीटर अते 200 मीटर दौड़ा विच हराया अते 100 मीटर विच अपना निजी सर्वोत्तम समा दर्ज किया। बाद विच जून विच उसने कजाकिस्तान एक मीट विच 200 मीटर विच अपना निजी सर्वोत्तम समा 22.99 सैकेंड दर्ज करके दौड़ जीती अते सब तो तेज भारतीय दौड़ाक महिला वचों तीजी बनी। उसने 2022 राष्ट्रीय मंडल खेडां विच 4x100 मीटर रिले विच चांदी दा तगमा जितया। 2023 विच उसने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच 4x100 मीटर रिले विच कांसी दा तगमा जितया। धनलक्ष्मी ने ओलंपिक्स तो पहला कहा सी कि उना दी मां ने उना नू इस स्थान ते पहुंचाने लई बहुत संघर्ष कीता अते ओ उना दा ऋण चुकाना चाहुंदी है। उसका कहना है कि मैं अपनी मां अते अपने देश नू तगमा जीत के मान दवाना चाहुंदी हाँ। धनलक्ष्मी, जिसने अपने शानदार खेड प्रदर्शन राही अपना ते अपने देश का नाम रोशन किया ते साबित कर दिता कि औरत जदों कुछ ठान लैंदी है ते ओ करके भी दिखाती है, जिसते पूरे देश ते समाज नू भी मान हुंदा है। असी भी धनलक्ष्मी शेखर की इस सोच नू सलाम करते हैं।
1: वाकई जी, शक्ति रूपा सिलसिले दे विच दौड़ाक धनलक्ष्मी शेखर साढ़े सब लई एक प्रेरणा है और घर बैठिया भैणा भी जरूर इस सिलसिले तो प्रेरणा लैंदियां ने। ते कोमल जी, एक छोटा जिहा गीत ना भैणों नूं सुना दईए।
2: बिल्कुल जी।

0: ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
1: ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ
1: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
4: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
3: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत

0: जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है साडे अज प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

7:40 सुनना समाचार समीक्षा। ₹7:45 सुन सकोगे प्राणी अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण ते डॉक्टर जवाहर तीर दी हिंदी वार्ता।

8 बजे होवेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। आठ बज के 45 मिनट से सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट अते 9:30 बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बज के 2 मिनट होवेगा प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। इस वेले दोपहर के 1:10 होने वाले ने। आओ हुण सुनते हाँ प्रादेशिक खबरां।

0: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफ़ती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर आज़म का क्लासिकी योग्यकर्ता रक्स के साथ रवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने नवीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वज़ीर आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ़्फ़ुज़ की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानंद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुरानी तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करने पर इंडोनेशिया के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफ़ती विरासत का इजहार होता है।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतअद्दिद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर परम्बानंद मंदिर में एक इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर

0: पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के तीन दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की एशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं, जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का अहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर माहशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमेरिका की फौजी तंसीबात पर जवाबी हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फिजाइया ने अमेरिका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने आबनए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीक करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने गुजरात के बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म माई नेम इज़ खान दा। इस गीत नू आवाज़ देती है शफकत अमानत अली ने।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਚੁਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना

पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य

0: तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा

के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 348.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी कलाकार बलविंदर मस्त दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के नाल योग्यकार्ता दे विच प्रांबनन मंदिर दा कीता दौरा। श्री मोदी ने कहा मंदिर की संभाल विच भारत की भागीदारी दोहां देशां की सांझी सभ्याचारक विरासत नूं है दर्शाउंदी। श्री मोदी अपना इंडोनेशिया का सफल दौरा मुकम्मल करने तो बाद मेलबॉर्न दे लई रवाना। ईरान ने अमरीकी हमलों तो बाद अमरीकी फौजी टिकाणियां ते कीते जवाबी हमले। जम्मू कश्मीर विच शौंपिया दे चनापुरा इलाके दे विच सुरक्षा बलों दे नाल होए मुकाबले दे विच एक दहशतगर्द ढेर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा दे लई नवी सलाह जारी करदिया श्रद्धालुओं नूं अपने आप नूं पहलां तों रजिस्टर करन ते परमिट विच दर्शाई गई तरीक ते ही यात्रा करन दी कीती अपील। संसदीय मामले दे राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नवी दिल्ली दे विच यूनिवर्सिटियां ते कालजां दे लई 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबले 2024-25 दे लई इनाम कीते तकसीम ते दे विच पंजाब दे दो संस्थावां जलंधर दा डीएवी कॉलेज ते बठिंडा दी केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी शामिल। भारतीय चोण कमिशन दे डिप्टी चोण कमिश्नर भानु प्रकाश येतूरू ते पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंद तामित्रा ने वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR 2026 दे तहत घर घर जाके गणना फॉर्मां दी वणती समीक्षा करन दे लई कल अमृतसर दे विच कीती मीटिंग। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कल शाहपुर कंडी दे दो नवे बनाए वाटर चैनलों दा कीता उद्घाटन। वेरका मिल्क फैड पंजाब ने 14.79% दे वादे दे नाल इस साल जून महीने दे विच 551 करोड़ रुपए दा कीता कारोबार दर्ज ते मौसम विभाग ने अगले 2 तों 3 दिनां दे विच दक्षण पछमी मानसून दे पंजाब हरियाणा ते राजस्थान दे बाकी हिस्सों दे विच अगे वधण दी जताई संभावना। अर्जेंटीना ते स्विट्जरलैंड दीआं टीमां फीफा फुटबॉल विश्व कप दे क्वार्टर फाइनल दे विच

गोविंदगढ़ माची वाला पिंड श्री करणपुर राजस्थान तो राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जीनू मनु आदित्य भूमि राखी अमृत पड़वा शिवसेठी करणपुरी ते समायल टुटेजा हरजिंदर सिंह पाटिया एंजल पाटिया नवनीत पाटिया पप्पी पाटिया लिख रहे ने जी जमशेदपुर तो ते श्री मुक्तसर साहब तो बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान रवनीत निशु ते भुपिंदर ते ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबर राही महराज जहां लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ते पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल गुरमीत गिल नाजम गिल सुखमन गिल ते कमलदीप गिल ते एस के शर्मा ते जगतार टेलर ते चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदर हसमुख जिंदर ते सारा ही खुशदिल परिवार ते चिट्ठी है जी मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत गवानकर राही श्रीमती सरिता गवानकर प्रिंस आकाश गवानकर ते बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत गवानकर परिणीता गवानकर त्याकार हाइट्स बहाथरा नागपुर तो वैशाली शैलेश गवानकर श्वेता सुमित गवानकर कुआरी ध्वनि गवानकर परी नदा घर का नाम ते लाडला टुक टुक गवानकर इन्हां दे नाल ते मॉडल टोन करनाल तो मीनाक्षी तिवाड़ी ते इन्हां दे नाल सुधीर नूतन संदीप गुगलानी सुनीता जैन सुनीता शर्मा ईशप्रीत शर्मा विपाशा शर्मा ते हरिपाल कौर फरमाइश इन्हां सारयां दी आवाज़ है जी दविंदर ढिल्लों की।

गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जम ल जाए कर पागा। गुरबाणी दी इस पावन पंक्ति तो पाव, सर्व रख्या लई रामकार या प्रभु रख तो है, पर शब्द चौंकी तो पाव गुरु सहबान वलों बद्दी मर्यादा दे अनुसारी होके कीर्तन करना है। इस पुरातन वडमुली अते टकसाली परंपरा नू शब्द चौंकी आख्या जांदा है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब विखे इसे पुरातन परंपरा मुताबक कीर्तन दा प्रवाह चलदा है। पड़ताल शब्द चौंकी दा एक सर्वोत्तम अंग है, जिसका अर्थ है किसे शब्द नू

0: पाल प्रभ कृपाल कवन गुन गनी अनिक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरचंद सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। शब्द चौंकी दी इसे पुरातन परंपरा बाबत आओ सुनदे हां तीरथ सिंह ढिल्लों होरां पासों वार्ता। गुरमत संगीत विच शब्द चौंकी दा महत्व।
1: गुरबाणी कीर्तन दे प्रमुख विद्वानां अनुसार कीर्तन गायन विधि नूं शब्द चौंकी भी आख्या जांदा है। जिवें चौंकी दे चार स्तंभ जां पावे हुंदे हन, उसे तरह शब्द चौंकी भी चार पाव्यां जां स्तंभां उत्ते टिकी हुई है। ये चार पावे इस प्रकार हन। पहला है शान वजाउणा। साज़ां नाल शान वजाउण करके संगीतक माहौल सिरजिया जांदा है। इस नाल कीर्तन प्रेमियां विच साचे नाम की भूख जागदी है। सुर साज वजाउण वाला लहरा वजाउंदा है, जिसनूं भारतीय संगीत विच नगमा भी आख्या जांदा है। दूसरा स्तंभ है विलंबित लय विच कुछ मिनट मंगलाचरण अर्थात गुरु उपमा करनी। इस दे अंतम बोल हुंदे हन गुरु गिरी बनवाज, गुरु गिरी बनवाज, गुरु गिरी बनवाज। संगीतक शब्दावली विच इस नूं तिहाई आख्या जांदा है। मंगलाचरण चार ताल जां एक ताल ठेके विच डंडौत तो बाद त्रुपद पड़ताल ख्याल आदि वख वख शैलियां नूं वख वख तालां अधीन रागां विच गायन करन दी गुरमर्यादा है। तीसरा स्तंभ है समय मुताबक रागां दा गायन करना। जिवें बहुत तड़के राग प्रभाती, फिर आसा, फिर भैरवी, फिर बिलावल, दोपहर वेले राग सारंग अते होर राग, शाम नूं श्री राग इत्याद अते रात नूं कल्याण, कानड़ा, केदारा, जैजावंती अते होर अनेका रागां दा गायन उस समय दी चौंकी मुताबक कीता जांदा है। ते अंतम चौंकी है पुरातन बंदशां, धुनियां अते रीतां। जिहड़ियां पुरातन बंदशां अते रीतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहिबान ने अंकित कीतियां हन, उन्हां दा मर्यादा मुताबक सरोदी गायन जिवें वार, पौड़ी, छंत, सलोक, घोड़ियां, अलहुणियां, करहले अते रामकली सद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारतीय शास्त्रीय संगीत दा ओ बेशकीमती खजाना है

दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे। इस स्वईये दा गायन कीता सी भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुण तुसी सरवण कर रहे सी साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार मीडियम एफ 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले 6 बजे ने हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।

0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 ते 10 सेकंड होए ने। हुण पेश है प्रोग्रामा दा वेरवा।

7:45 हिंदी वार्ता प्रोग्राम च डॉक्टर जवाहर तीर दी वार्ता सुनोगे प्राणी अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण। इस तो फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन ते रेडियो रिपोर्ट सुनोगे। अठ बज के 11 मिनट ते प्रोग्राम जिंदगी हसीन है पेश करांगे। रात 9:15 स्पॉटलाइट ते 9:30 चर्चा का विषय है प्रोग्राम तुसे सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। दस बज के 2 मिनट ते फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश पेश कीता जावेगा। रात 11:10 ते प्रोग्राम सौगात डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र तो तुसे सुनोगे। सो एसीजी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
5: असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण सुनदे हां देश गान।

0: लेके कमीशन ने संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख जो 8 अगस्त है तो एक हफ्ता पहला अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ने। कमीशन ने पालना वास्ते पंजाब ते चंडीगढ़ के स्थानक सरकार विभाग के सकत्तर नूं भी लिखा है। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो FBI वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ़ जबरन वसूली दियां कुछ मीडिया रिपोर्टां दा नोटिस लैंदिया पंजाब पुलिस ने उस नूं तुरंत प्रभाव नाल लाइन हाजिर कर दिता है। FBI ने ऑपरेशन हार्डबाल तहत कथित तौर पर उसते 4 लाख अमरीकी डॉलर की जबरन वसूली का इल्जाम लगाया। यह मामला होशियारपुर के टाणा पुलिस स्टेशन के SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा नाल संबंधित है जो कथित तौर पर भारत में एक झूठे कतल मामले च एक अमरीका आधारित परिवार को फसाने की कोशिश कर रहा है। FBI वालों इस मामले की एक वीडियो बयान में पुष्टि की गई है। पंजाब पुलिस के अधिकारित सूत्रों मुताबिक पुलिस विभाग ने रिपोर्टों का नोटिस लिया तो इल्जाम की पुष्टि करने लिए एक रस्मी तत् खोज जांच के हुक्म दिए ने। निरपक्ष जांच को यकीनी बनाने लिए जांच होशियारपुर तो बाहर पुलिस सुपरडेंट रैंक के एक सीनियर पद्धर के अधिकारी को सौंपी गई है। उसनों जल्द तो जल्द एक वेरवे समेत रिपोर्ट सौंपन के निर्देश दिए गए ने। कुछ राजनीतिक पार्टियां ने सूबा पुलिस के कामकाज की भी चिंतावां जाहिर कीतियां ने। पंजाब पुलिस ने आज अमृतसर विच 3 मुलजमान तो 12 आधुनिक पिस्तौल ते 6 हथगोले बरामद किए ने। वह पाकिस्तान की ISI के विदेश अदालत बबर खालसा इंटरनेशनल के कारकुनों वालों समर्थ एक गैर कानूनी हथियारों विस्फोटक तस्करी मॉड्यूल का हिस्सा सन। पुलिस सूत्रों ने दसिया है कि मुलजमान सरहदी सूबे पंजाब जनतक शांति भंग करने के उद्देश नाल गतिविधियां करने लिए एक खेप मिली सी। मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई जारी है। अमृतसर में इस हफ्ते दौरान हथियारों से गोला बारूद की यह तीजी बरामदगी हुई है। इस तो पहला पुलिस ने 2 मुलजमान तो गोला बारूद समेत 7 पिस्तौल भी जब्त कीतियां सन। मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ इलाकों और चंडीगढ़ में 9 जुलाई तक भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। इस तो इलावा 11 ते 12 जुलाई में भी इन खेतरों में भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान फरीदकोट समेत कई थावां ते दरमियानी बारिश हुई। अज दर्ज किए गए वध तो वध तापमान च फरीदकोट 38.9 डिग्री सैलसीयस ते हरियाणा का सिरसा 36.2 डिग्री सैलसीयस नाल सब तो गर्म शहर रहे। चंडीगढ़ में वध तो वध तापमान 32 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। ते आखिर विच खास खबरां एक बार फिर तो केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे अते जलंधर समेत सूबे विच कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। NRI मामलों बारे विभाग ने ऑनलाइन NRI मिलने का आयोजन किया। मंत्री वालों अधिकारियों नूं तुरंत कार्रवाई के निर्देश। पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया वालों विभाग नूं 30 जुलाई तक पशुधन का टीकाकरण करने के निर्देश। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ़ जबरन वसूली के बयान का नोटिस लैंदिया पंजाब पुलिस ने उसनों तुरंत प्रभाव नाल लाइन हाजिर किया। पंजाब पुलिस ने आज अमृतसर विच 3 मुलजमान तो 12 आधुनिक पिस्तौल ते 6 हथगोले बरामद किए अते मौसम विभाग वालों अगले 2 दिन लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी मीह पैण बारे येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी। ते इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 7:30 ते। नमस्कार,
1: असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 6:30 ने। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: मैं क्या मोतियां नहीं सरकार कर रही है लंघ आइए
1: आ जो आ जो लंघ आओ पांची आ जो
0: आ गए जी आ गए जी।
1: जय हिंद जी पांची।
0: जय हिंद महाराज। जय हिंद। की हाल है जी थोड़ा?
1: तुम सुनाओ।
0: मैं

0: करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दी अपनी यात्रा सफलता नाल पूरी करन तो बाद ऑस्ट्रेलिया दे मेलबोर्न लई रवाना हो गए ने। विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया है कि मित्रता दे विशेष प्रतीक वजो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने

जब वातावरण प्रदूषित हो जाए, शहरी और विशेषकर वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु में परिवर्तन के हो जाने पर इसका सबसे अधिक असर प्राणियों के जीवन पर पड़ता है। इससे मनुष्यों का जीवन और स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि संपूर्ण सृष्टि का जीवन पर्यावरण पर निर्भर होता है। मानवीय गतिविधियों का सर्वाधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों पर निर्भर होता है। सजीव वस्तुओं में लोग, पौधे, जानवर और बाकी सभी जीवित चीजें शामिल हैं और इनका जीवित रहना पर्यावरण की निर्जीव चीजों पर आश्रित है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का स्पष्ट परिणाम हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे धरती पर मनुष्यों की गिनती बढ़ती है, तैसे तैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों की कटाई बढ़ने लगती है और वनों की कटाई जलवायु में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये बात उल्लेखनीय है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, उनके लिए भोजन और जीने के लिए लिए जरूरी वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होगी। ये बात हर कोई समझता है कि मानवीय या अन्य प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर रहता है। प्राणियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्व है। इसलिए पहले यह जानना भी जरूरी है कि पर्यावरण प्रेमियों को देता क्या है। पर्यावरण प्राणियों के लिए रहने के लिए आवास प्रदान करता है। आवास उपलब्ध होगा तो प्राणी वहाँ पर भोजन का प्रबंध कर सकता है, प्रजनन कर सकता है और आवास होगा तो जीवित रह पाना आसान हो जाता है। पर्यावरण ठीक होगा तो हर प्रकार के प्राणियों के लिए भोजन की उपलब्धता आसान होगी। ऐसा होने पर मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और पौधे जीवित रह पाएंगे। सुरक्षित पर्यावरण प्राणियों को कुदरती विपदाओं तथा शिकारियों से बचाने में सहयोगी सिद्ध होता है। पर्यावरण संरक्षण का सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के सारे प्राकृतिक माहौल पर गहन दृष्टि डालें तो समझ आता है कि इसका आपसी संबंध बहुत गहरा है। निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आज सारी पृथ्वी दूषित होती जा रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी के दूषित होते जाने के कारण निकट भविष्य में मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। विशेषज्ञों ने इस खतरे को भांपते हुए सन 1992 में विश्व के 174 देशों ने मिलकर ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके इस खतरे पर मंथन किया था। इसके 10 वर्ष बाद यानी सन 2002 में एक बार फिर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के सभी देशों को संदेश दिया गया कि सभी देश पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। ये भी कहा गया कि धरती पर जीवन का संरक्षण तभी संभव है अगर पर्यावरण का संरक्षण करने की ओर ध्यान दिया जाए। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मंगल ग्रह आदि की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। पिछले कई दशकों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। आज मानव चाहता है कि और अधिक से अधिक आविष्कार करके वह प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर ले। इसी कारण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि, लगातार कटते जा रहे पेड़ और बन रहे कंक्रीट के भवनों के अतिरिक्त जिस गति से वनों की कटाई करके वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप न सिर्फ मानव जाति को अपितु धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को ऐसे वातावरण में धकेल दिया है जहाँ स्वस्थ जीवन रहेगा ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि कितनी प्रकार की नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसका कारण मानव द्वारा प्रकृति से मुंह मोड़ना और निज हितों का ध्यान करके प्रकृति का जरूरत से ज़्यादा दोहन करना है। पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमें साफ हवा, पानी, भोजन आदि और मनोरंजन के लिए जगह देता है। प्रकृति में समय व्यतीत करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखता है और अगर हम ग्रह, इसकी जलवायु और परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखते हैं

0: हम अपने समाज के कामकाज को कमजोर करते हैं, अपने जीवन को खराब करते हैं, और अगर स्पष्ट कहूं तो हम स्वयं के कल्याण को नुकसान पहुंचाते हैं। शायद इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरण के संरक्षण से हमारे जीवन से जुड़ी सभी क्रियाएं स्वस्थ रह सकती हैं। धरती पर उगते पौधों और जानवर पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो इन प्रजातियों को विलुप्त होने में बचाने में सहायक होगा। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी और खनिज पदार्थों का अगर हम जिम्मेवारी से प्रयोग करें तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। पर्यावरण के संरक्षण से पर्यटन, कृषि और मछली पालन जैसे उद्योगों को लाभ होता है। दूसरी ओर प्राणियों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे परिस्थितियाँ संतुलित रहती हैं। कुछ प्राणी रोगों के वाहक हो सकते हैं तो कुछ रोगों को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं। इसलिए प्राणियों का संरक्षण मानव स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि पर जन्मे हर प्राणी को जीने का अधिकार है। इसलिए जरूरी है कि हम सृष्टि के सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी भागीदारी क्या है। नंबर एक, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं, इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने में आगे आना चाहिए। इस सृष्टि पर जीवन को बचाए रखने के लिए पानी का बहुत अधिक महत्व है। हम सबको मिलकर पानी को व्यर्थ में बहने से रोकने में जागरूकता लानी चाहिए। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक का उपयोग संयम से करें और इस बारे में लोगों को भी बताएं। लगातार कटते जा रहे जंगलों के कारण जंगलों में रहते जानवर अब शहरों की ओर आने लगे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई इनका शिकार ना करे या पकड़ कर ले जाकर इनका व्यापार ना करे। हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करना नहीं करेंगे तो ऐसी गतिविधियां हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाएंगी। इससे सिर्फ हमारा ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का गौरव को नुकसान पहुंचेगा। अंत में मैं पर्यावरण संरक्षण के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को याद करते हुए उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए कामों का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध अन्वेषणों और लेखन के माध्यम से आधुनिक पर्यावरण विज्ञान की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी योगदान के कारण उन्हें पर्यावरण का पिता यानी फादर ऑफ एनवायरमेंट के रूप में याद किया जाता है। आइए उन्हें स्मरण करते हुए हम प्रण करें कि हम पर्यावरण का संरक्षण करने में अपना सहयोग देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राणियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर प्राणियों का अस्तित्व नहीं बचा तो इस सृष्टि को भी नहीं बचाया जा सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में डॉक्टर जवाहर धीर की वार्ता, प्राणी अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण। असि आकाशवाणी ती जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन सुनते हैं गजल।

जी बिल्कुल सच्ची गल है। जिंदगी दे सफर विच कुछ मुकाम अजिहे हुंदे ने जो एक बार लंघ जाण ते मुड़ वापस नहीं आउंदे। इसलिए हर पल हर मौके की कदर करनी चाहीदी है। बीतिया समा सानू सिर्फ यादां ते तजर्बे ही देके जांदा है पर मुड़ वापस नहीं मिलता। जो इंसान समय की कीमत समझता है वह जीवन विच सफलता नू हासिल करता है। इसलिए अज नू पूरी तरह पूरी लगन दे नाल ते खुशी दे नाल जियो क्योंकि यही पल कल एक याद बन जाएंगे। समय का सही उपयोग ही जीवन की सब तो वड्डी सियाणप है।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक

0: शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस

0: लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का

0: सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem, Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Rambanan Temple in Yogyakarta.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मानसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे

बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है

0: भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं, इस परिस्थिति में आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी आप

0: से ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
1: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
0: प्रभावित होंगे,
1: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
0: जी
1: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
0: जी।
1: तो वो करके तैयारी रखें अपनी, अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, अब बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है इस बार, मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
0: जी,
1: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
0: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
1: तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मौसम विभाग आज के इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट

0: एक या दो लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिए, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है,

0: बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें यह भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा, जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है, तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले।

0: इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा कहीं, वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: नहीं देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन हैं वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा

0: प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: पद्मा टॉकीज नेपा नगर तो सानू फरमाइश भेजी है सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगला बैन ते राजेंद्र जी शाह होना ने। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। पिंड चगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत ते मनराज। पिंड जाखोद राजस्थान तो शंभूदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक। अस्तपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। पिंड निथाणा बठिंडा तो सानू फरमाइश भेजी है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता ते गीता होना ने। आओ हुण सुनदे ना सारे दी मिली जुली फरमाइश ते प्रेम कहानी फिल्म दा गीत मुकेश ते लता मंगेशकर दी आवाज़ च।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही।

0: फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, नियोला अंबाला तो महिंदर रॉयला, रंजीत, मनी, रूबी, हैप्पी, किरण, सिमू ते इन्हां दा पूरा ही रॉयला परिवार। पिंड इस्लामवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो सोनलाल रत्थी, ओम प्रकाश, शगुन, लवकुश वर्मा, शतरपाल सिंह, रजिंदर सिंह, बाबू सिंह, काका पट्टी ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने। जसपुर उत्तराखंड तो सानू फरमाइश भेजी है रियासत हुसैन सदीकी, नाजमा बेगम सदीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, लोकू कलोनी लोहारू हरियाणा तो फरमाइश भेज रहे ने जी। बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा योगेंद्र, नरेंद्र ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तो फरमाइश भेज रहे ने जी। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। आओ हुण सुणदे इन्हां सारिआं दी मिली जुली फरमाइश ते फिल्म दीवाना दा गीत। आवाज़ है जी कुमार सानू ते अलका याग्निक दी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता को

स्त्यूप ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्था कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी प्रोग्राम दी शुरुआत हो चुकी है। पहले कॉलर दोस्त नंबर मिला के साढ़े कोल पहुंच गए नहीं, आओ कल बात कर दें। हेलो
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: मैं जाम जज्जा मोड़ी जिला अम्बाला जी।
0: क्या बात है जी। हेलो
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, आवाज़ थोड़ी पहला कट रही सी। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: आप जी मेहरबानी, आपने फोन अटेंड किया जी।
0: देखो थोड़ा प्यार है तो उसी प्रोग्राम के विच नंबर मिलाने हो साढ़े तक पहुँचते हो, बहुत बहुत शुक्रिया उहदे लई।
1: अभी अद्धी रात तक नहीं सुनते जी।
0: क्या बात है, आज की खास प्रोग्राम की शुरुआत पहले लकी कॉलर दोस्त बन गए हो, की सौगात साढ़े लिए लैके आए हो?
1: अच्छा, जड़ा मर्जी ला दो जी, की तुम्हारी फरमाइश है जी।
0: चलो ठीक है जी, जिम्मा तुसी सानू दे देता है, उम्मीद करते हैं तुहानू जरूर पसंद आएगी। फोन करनी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी।

0: लाओ जी नंबर मिला के दोस्त पहुंच के नहीं आओ, गल बात करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने?
1: मनजीत कौर बोल रही हैं, दिल्ली से। सुनाओ की हाल चाल।
0: दिल्ली दिलवालियां दी क्या बात है मनजीत कौर जी, की हाल चाल है तुम्हारा?
1: बस हाल चाल वधिया है, बारिश पै रही है, गर्मी थोड़ी घट रही है आज।
0: क्या बात है, फिर ते मौसम दिल्ली दा मतलब जबरदस्त बनया है।
1: हाँ जी बहुत वधिया, बहुत
0: मौसम। बारिश सवेर दी हो रही है या हुनी शुरू हुई है? क्या बात है, फिर तक किनमेंट जड़ी है वो हमेशा मतलब पूरी दिन तो लेके हुन रात तक पहुंच गए, तो किनमेंट दा माहौल बनया रहा मतलब।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ते फिर आज खास की सुनना चाहने हो?
1: आज फिर आई सुना दो किनमेंट सोन में ना किनमेंट।
0: क्या बात है, क्या गाने दी फरमाइश है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

0: लाओ जी नंबर मिला के दो साढ़े को पहुंच गए नहीं। आओ गल बात करते हैं। हेलो
1: जिस यार दे यार हजार होवन ओनू अपना यार ना समझी, जेड़ा हद तो ज्यादा प्यार करे ओदे प्यार नू प्यार ना समझी, जेड़ा होवे यार ते देवी हार ओदी हार नू हार ना समझी, तेरा जितना यार गरीब होवे ओदी संगत बेकार ना समझी। सर जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुन वाले श्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: देखो ये तो प्यार दी गल हो गई ना कि तू वो ताले दी चाबी है जिन्हों हमेशा मैं खोलता रहना है।
1: हाँ जी
0: तू ओ ओदे अंदर तू ओदे बाहर तू ओ जिधर भी देखे बस तू ही हो। तू तू ही हो। तू
1: बिल्कुल
0: ते तू ही हो। तू
1: बहुत बढ़िया।
0: यारी जड़ी है ना वो जड़े तुसी मिसाल दिती है ना यार जदों खड़ जाना नाल ते
1: हाँ
0: फिर तो
1: जी
0: कहिंदे हुंदे ने कि चाहे जो मर्जी हो जाए दुनिया इधर तो उधर हो जाए फिर जदों यार एक सच्चा तुहाडा साथ दे देवे ना ते फिर तो सारे ही काम कहिंदे ने पार हो जांदे ने।
1: बिल्कुल जी। यारी जट दी ते तूर दा मुछा कदे ना विचाला टुट दे।
0: क्या बात है। ते अज इस मैसेज दे नाल ही गीत केड़ा सुनना चाहुंदे हो?
1: दीप सती सुनावे आलम लोहार दा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाई दा।
0: ठीक है जी। थोड़ी पसंद थोड़े तक पहुंच रही है। फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: जी नंबर मिला के दो साढ़े को पहुंच के नहीं आओ, गलबात कर दिया। हेलो,
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीराम लौड़ सामने।
0: क्या बात है जी, तुहाडा हुणी लैटर असी जिहड़ा है बहुत सुणा ने, अखरां दे नाल पढ़िया है, ते तुहाडी जिहड़ी है प्रोग्राम दे विच एंट्री हो गई है, बहुत बहुत स्वागत है सर
1: शुक्रिया जी।
0: जी। होर सुनाओ, की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया सर।
0: घर परिवार चढ़दी कला?
1: हाँ जी सर, थोड़ी
0: चल
1: मेहरबानी।
0: नहीं, साड़ी मेहरबानी का दी है, तुहाडा प्यार है, तुहाडा प्यार सदका ही प्रोग्राम च असी जुड़दे हां, और जदों तुहाडे वर्गे दोस्त प्रोग्राम च आ के हाजिरी लवा देंदे ने, पता लग जांदा दोस्त हुणी प्रोग्राम सुन रहे ने।
1: हाँ जी।
0: ते अज की खास सुनना चाहुंदे हो?
1: हरजीत हरमंदर सनादर जी दे वधिया जी।
0: ठीक है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंच रही है, फोन करने लई बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: सर जी।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
0: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़।
1: क्या बात है, चंडीगढ़ वाले में बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात।
0: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी
1: बहुत बहुत सुनाओ, चंडीगढ़ का की हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया है सर जी।
1: मौसम ने करवट ले ली है चंडीगढ़ से कि नहीं?
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मतलब मीह मुंह पै गया है?
0: रुक रुक के हम भी बाहर से सर जी लगातार में।
1: क्या बात है, मतलब सौण नु तुम वाजा मार रहे हो तो बस थोड़ी के दूर ते ही रह गया है।
0: हाँ जी हाँ जी, तो भी
1: मतलब तैयारी पूरी है?
0: हाँ जी हाँ जी, तैयारी
1: ठीक है जी, ठीक है, क्या बात है। तो आज फिर की खास सुनना चाहते हो?
0: सर जी तो लड़ रहा गेट सामने।
1: ठीक है जी, थोड़ी पसंद थोड़े तक पहुँच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: तुसी जड़ी है पहली कॉल मिला के शुरुआत कर देती है। हेलो,
1: हाँ जी,
0: ते आज की खास साडे लई सौगात लेके आए हो?
1: कॉलम लहा दा मोर मटीरिया पाया जी,
0: ठीक है जी, तुहाड़ी पसंद तुहाड़े तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी।

0: लो जी, नंबर मिला के दोस्त आ गए नहीं। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: बिल्कुल
0: क्या बात है, जलंधर वालों की फाइनल प्रोग्राम च एंट्री हो गई है। अज तो वैसे तो दूसरी तीसरी कॉल है, अज जलंधर वालों ने काफ़ी बाजी मारी है। देखो, तुसी जदों याद कर लेने असी पहुँच जाने, कोशिश यही हुंदी है कि हर शनिवार असी मिला के रखे है। कुछ क शनिवार सानू तुसी पहला याद कर लिया ते असी पहला पहुँच गए हैं, पर कोशिश साड़ी है कि शनिवार जरूर तुहाडे नाल मुलाकात फिर दोबारा होवेगी। क्या बात, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अज की खास सौगात साढ़े लिए लैके आए हो? क्या बात है, क्या बात है, कमाल करती है सर। ते आज की खास लेके आए हो साढ़े लिए सौगात?
1: बहुत वधिया लगे आ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ
0: ਠੀਕ
1: ਆਏ
0: ਹੈ
1: ਅੱਜ,
0: ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ
1: ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ
1: ਤੁਹਾਡਾ।
0: ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।

पेंड पंगाला जिला फाजिलका जगतार गिल गुरमीत गिल नाजम गिल सुखमन गिल कमलदीप गिल एस के शर्मा उन्होंने याद किया तो जगतार टेलर खास नाम कहते जरूर तुम लै लेना है जी असी बिल्कुल उन्होंने प्रोग्राम चु शामिल कर लिया फरमाइश कहते हैं कि साड़ी पहला तुसी जरूर सानू आज सुना देनी है कोई भी नचण टप्पण वाला गीत क्या बात है जी कृपा करके सानू जरूर सुनाया जाए जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया अंजल पाटिया नवदीप पाटिया तो पप्पी पाटिया बिल्कुल जी साड़ी कोशिश रहेगी तुहाडा जिहड़ा नचण तुसी बिल्कुल रैडी रहो तुहानू नचण असी बिल्कुल तुहाडे लई पैपी सौंग रैडी है प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन ते कुलदीप उन्होंने सानू याद किया टालीवाला जटा तो साहब सिंह सुखजीत कौर बलविंदर हरजिंदर गिदड़बाह तो मनजीत तनेजा प्रवीण तनेजा उन्होंने सानू याद किया पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक निशान सिंह बुक सीरत कौर कीरत कौर ते दादी जसवंत कौर उन्होंने सानू प्यार भेजा अगली चिट्ठी की गल करिए जी बड़ी सजा के जो साढ़े कोल पहुंची है जी बड़े कलरफुल तरीके जिहड़ा है वो साढ़े तक पहुँचाते हैं चिट्ठी बहुत बहुत शुक्रिया जी इदा ही तुम जरूर साढ़े तक पहुँचाते रहो सूँ उम्मीद है कि तुम चिट्ठी हमेशा इदे लिखते रहोगे पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग गोविना चुग टोनी लव तो राधा उन्होंने सानू प्यार भेजे बहुत बहुत परिवार जिहड़ा है साडा चुग फैमिली साढ़े नाल कहिंदे असीं बहुत सालों तुहाडे नाल जुड़े हाँ सो बहुत सारा प्यार भेजे जी बहुत बहुत शुक्रिया गल आउंदी है नचण टप्पण दी तुसी नचण नूं तैयार रहो असी तां हमेशा ही तुहानूं नचण लई बिरकरार हुंदे हां कि साडी कोशिश इही हुंदी है तुहाडी हर एक जिहड़ी फरमाइश है वह जरूर असी पूरी कर सकीए ते तुसी नचण दी गल कीती है ते नचण लई हुण तुसी रैडी रहो गाणा तुहाडे तक पहुँच रहे मिलदे हां इस गीत तों बाद

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार पारस जी। भूषण
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: कटारिया मलोट तो बोल रहा सर। मेहरबानी
0: मलोट वाले हो, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ते जलंधर ते रेडियो च। इस वेले मलोट दा की हाल चाल है?
1: ठीक ठाक जी।
0: चलो ते आज गीत केड़ा सुनना है?
1: नूरा सिस्टर सुना दो जी, यार दी गली।
0: ठीक है जी, तुहाडे तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेहरबानी।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

सो दर के हा, सो कर के हा, जित बह सर्ब समाले। हे अकाल पुरख, तू किस कर या अस्थान ते निवास रखदा है, जिथे सुभायमान हो के तू समुची खलकत दी प्रतिपालना ते संभाल करता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच होरना लफ्जा वांग अनेक बार कर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रमाण वजों थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। इथे घर तो भाव प्रतख तौर ते निवास अस्थान या दुनियावी घर तो है, पर गुरबाणी विच हरेक शब्द दे नाल कर सिरलेख जरूर आउंदा है। इथे इस दे अर्थ बिल्कुल ही वखरे हो जांदे ने। घर तो पहला संबंधित शब्द दे राग दा नाम दर्ज हुंदा है, जिमें राग तनासरी महला पहला कर तीजा। इस तो भाव है कि इस शब्द दा गायन राग तनासरी जो कि निर्धारित राग है विच करना है, ते तबला वादक ने तीन ताल विच संगत करनी है। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां। आओ सरवण करदे हां प्रोफेसर हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

0: मैं बेक्योरी ऊंचा, मोहन सबते ऊंचा। इस शब्द गायन की तासी प्रोफेसर हरचंद सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने गुरमत संगीत विच गायन हित तालां दे अनेक रूप सदियां तो चले आ रहे ने ते अज भी प्रचलित ने। बहुते संगीत आचार्य इस मद्दे तारनी ने कि संगीत दी बेबहा सूझी रखण वाले शास्त्रीय संगीत दे महान अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो ने 17 ताल इजाद कीते जिहड़े के बुनियादी अते बिखड़े ताल हन, जिवें सूल फाख्त ते फरो दस्त इत्याद। इस वास्ते ये गल संभव है कि गुरबाणी दे 17 कर या ताल इन्हां तालां दे ही कदीमी रूप या प्रकार होण। गुरबाणी विच घर दा सिद्धांत सुनदिआं डॉक्टर चरण कमल सिंह होरां पासों इह वार्ता।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरबाणी दे सुनेहियां नूं समझण लई सब तों पहलां गुरबाणी दी तुक दे अर्थ समझे जांदे हन। बंधन तोर छोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा ही रहि दीन। फाइयां नूं तोड़ के माया तो छुड़ा के गुरु दा शब्द मेरे हिरदे नूं बख्श दिता है, वसा दिता है, वासा कर दिता है। जदों सानूं एक तुक दे अर्थ पता लग गए तो उस तो बाद इस तुक विचों गुरबाणी दे सुनेहे किहड़े ने ए असी जिग्यासु ने या तां अपनी समझ तों ओ प्राप्त करने ने, जां असी ए देखना कि इन्हां विचों गुरु साहब दा निर्देश की है कि किहड़े सुनेहे किस तरह लेने हन। जदों इस गुरबाणी दी तुक दे जिग्यासु ने भाग किते अर्थां अनुसार तां इस दे 4 भाग किते। बंधन तोर, उसनों लग्या कि यह मैनू एक सुनेहा है। बंधन तोर दूसरा सुनेहा है छोर बिख्या ते, तो इसका पाठ बंधन तोर वखरा छोर बिख्या ते वखरा। गुर को शब्द, ये एक गुरु का शब्द इत्थे ओ जिग्यासु रुकदा है। मेरा हीर है दीन, फिर अपने हिरदे वालों प्रेरित होंदा है, तो इसनों 4 सुनेहे प्रतीत होंदे ने। एक दूसरा जिग्यासु है, उसनों जापदा है कि बंधन तोर छोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, उसनों ये 3 सुनेहे प्रतीत होंदे ने। एक होर जिग्यासु है, उसनों जापदा है कि बंधन तोर छोर बिख्या ते, ये एक सुनेहा है, ते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, ये दूजा सुनेहा है। पर एक होर जिग्यासु है, वो इसे तुक नूं अर्थ समझण उपरंत ये समझदा है कि सुनेहा ये निकल रहा है कि बंधन तोर छोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, और सारी तुक विचों गुरबाणी का इको सुनेहा प्राप्त करता है। हुण असीं देखते हाँ कि इस तुक वांगू गुरबाणी की हर तुक दे वक वक प्रकारां दे सुनेहे असी प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह गुरबाणी की ओ तुक साडे जिग्यासु दे गुरमुख प्यारे दे मन नूं टुंब रही है, उस तरह दे सुनेहे ओ प्राप्त कर रहा है। हुण देखण वाली गल ए है कि की गुरु साहब वल्लों भी कोई निर्देश है विचों किहड़ा सुनेहा या किन्ने सुनेहे ते किहड़े सुनेहे प्राप्त करने हन। ये गुरबाणी का मौलिक परिपेख होएगा गुरु साहब वल्लों की निर्देश है, ते उहदे विच की हुंदा है कि जिहड़ा गुरबाणी विच गुरबाणी दी तुक विच अध्यात्मक महत्व अध्यात्मक रमज़ां किहड़ियां ने, हुण जिहड़ी असीं तुक विचार रहे हां, बंधन बिख्या शब्द ते हीर है।

साथ धरती पई हरियावली जिथै मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। इस शब्द का गायन कीता सी पाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पंच पूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सार रथ उन्मा।

जगत्र गुर परस मुरार। दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन। शब्द सूर बलवंत काम यर क्रोध विनाशन। लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतिपालन। आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल ढालन। सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लागै सो पैतर। गुर जगत फिरण सिहि अंगरो राज जोग लहना करे। गुर जगत फिर

0: सदा अकल लिव रहे, करम सुचाचार दुरम स्पूत जो निवे, खवे कस बिमल विचार एह तत् जान्यो, सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो, किरण मत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो, सत संतोख समाज लयो गुर परस्यो, कल समुल वै जन दर्शन लहने पयो, मन विसास पायो गहर गोदर दियो, गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो, रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर, सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर, उधारो चित दारि दुहरन बिखंते कल मल तसन, सतरंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन।
1: नाम अख नाम दार और नाम सम

0: गुर ज्ञान अर ध्यान तत् सो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत नातावे निरंकार के बसे देस हुकम बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो।
1: सतगुर नाम एकले मन जपे दड़ो तिन जन दुख पाप कहो कत हो जियो तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तार सब तो रद विचार काम करो दखो वह जियो जी अन्न सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता है न सत्यान तावे पल कन सो वह जियो जा को देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल तो वह जियो सत

अमृत परवासर अतुल भंडार पर परहित पर अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो थर ओपत।

तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जानम जानम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दैसाहु।

हे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम

ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फेड करें मन झूठे जुली परें कहो ना।